0: That's Blink 182 FM, Kenya's premier Asian mix. This is The Rush with Vishal. And coming up is your facts, did you know? And aaj ka fact is very, very interesting. You know, we all... अब हमको तो पता ही है, मोस्ट ऑफ अस नो दैट देर आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी. बट एक ऐसी चीज़ पढ़ी मैंने कपल ऑफ डेज अगो एंड इट वॉज सो मेसमराइजिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी. एंड ये मेरे को एक्चुअली मालूम नहीं था एंड आई गॉट टू लर्न समथिंग न्यू. सो आई विल शेयर दैट विद यू ऑन फैक्ट्स डिड यू नो विच इज़ कमिंग अप शॉर्टली.
1: ईस्ट एफएम

0: सिर्फ दिल टूटा है सांस में धड़कनों में रवानी अभी बाकी है प्यार का किस्सा खत्म हो गया तो क्या जिंदगी की कहानी अभी बाकी है
1: हाय दिल तोड़ के
2: Kenya's premier Asian mix. Asian mix East FM.
3: Now listen.
4: Get up.
3: That's right.